या टुकनाबा तेना तेरंग लेसन दगे छि थोमरंग आछि लवा थोरंग लंबी संजा लोलो सुगुनो लस्कि न्यामो दि न्याम गरो न्यु जिमर तना श्यामनी कोडगुनो गन छामरी लकी अर्जुन तर्क मुमी लेसन ना सिंखिन चे टुकुश करेवा तात स्कब ज्यापा गदुन नंदर टोचे साम चीज ग कोडग जुरेवा तंदा तना आछि स्कब ज्यापी दुन नंदर जी तंगने जिना शगांग तंपु थोंखन Lewa kabzang nam chukka langwi gandrun lak senei dungan zi gogdik siwa dungan dayang sosurun chambi lak chi sikara miyana kabjimi lechana ngariwa shankin jato gu cho man tata lechana pepera gabsa shi